किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।